0: अस्सलाम सामीन, ये सदाए तुर्की है, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 25 अगस्त बुरुस मंगल है। इस वक्त अंकर के मुकाम वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामीन, आप हमारे नशियात का शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा तुर्क सैटेलाइट ईस्ट और 4 वेस्ट सैटेलाइट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं।
0: और आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलावार प्रोग्राम शोरश सदा अफ्रीका और अहम इजादात पेश किए जाएंगे। हमारी नशरियात इस पे मामूल अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे इख्तिताम पसीर होंगी। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन,
1: सगीर अहमद,
0: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रहे हैं आरसू उस्ताद।

0: पेरिस से निकाले जाने का खैर मकदम किया है।
1: इसराइल गजा पर मुसलत करदा नस्ल कुशी जंग में 21,500 से जायद फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर चुका है।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने ब्राज़ील के सदर लूला दा सिल्वा और लिथुआनिया के वज़ीर आज़म मंदाओ गास सेनिक्सिस से अलग अलग टेलीफोनिक मुलाकात की है। ईवान सदर के महकमा इत्तलात के बयान के मुताबिक ब्राज़ील के सदर दा सिल्वा से मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर एर्दोआन ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों बिलखसूस सरमायाकारी तजारत और दिफाई सनत में तआवुन को गहरा करना बहुत मुफीद साबित होगा। लिथुआनिया के वज़ीर आज़म सेनक्वेसिस के साथ बातचीत में सदर एर्दोआन ने अपने हम मनसब के इनके सदारती अहदे पर कामयाबी की तमन्ना का इजहार किया है। सदर एर्दोआन ने इस यकीन पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने नए दौर में खास तौर पर को बढ़ाने की अहमियत को भी उजागर किया है।
0: तुर्की और कतर ने दो तरफा तजारती हजम को 5 अरब डॉलर तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया है। तुर्की के वजीर तजारत उमर बोलात ने अंकरा में कतरी वफद के साथ होने वाली मुलाकातों के बाद कहा है कि मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती हजम को 5 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बोलात ने वजारत तजारत में कतर के वजीर बराए खारजा तजारत अहमद बिन मोहम्मद अलसानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोलात ने कहा कि मुज़ाकरात में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया है। तुर्की और कतर के ताल्लुकात ने हकीकतन एक गैर मामूली पेशरफ दिखाई है। हमारी मजमू सालाना गैर मुल्की तजारत का हजम गुज़िश्ता 21 बरसों में 53 गुना इजाफे के साथ गुज़िश्ता साल 1.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।
1: शाम के सदर अहमद अल शरा ने शाम को अमरीका की दहशतगर्दी फहरिस्त से निकाले जाने का खैर मकदम किया है। अल शरा ने अमरीका की जानब से शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकाले जाने का खैर मकदम किया। शामी अवाम को मुबारकबाद दी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और दमिश्क के हामी ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। पीर के रोज़ जारी करदा एक बयान में अल शरा ने कहा है कि मैं शामी अवाम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शाम का नाम बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं अमरीकी सदर का और शाम और शामी अवाम का साथ देने वाले तमाम बरदर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर खारजा असद अल शिबानी ने भी इस फैसले को शामी अवाम की लाई हुई तब्दीली का नतीजा करार दिया और कहा है कि ये फैसला नई शाम के बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती से मुतल्लिका अज़्म की अक्कासी करता है। अल शिबानी ने एक्स से जारी करदा बयान में 47 साल बाद दहशतगर्द तंजीम की हैसियत खत्म किए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि हम शामी अवाम को इस तारीखी संग मील पर मुबारकबाद पेश करते हैं।
0: तुर्की ने शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकालने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में तुर्की की वजारत खारजा की जानब से एक तहरीरी बयान जारी किया गया। बयान में अमरीकी इंतजामिया और कांग्रेस के मुस्बत रवैये को सराहा गया है, जबकि शामी हुकूमत और वहाँ के अवाम को उनके पुरअज़्म मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश की गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि तुर्की तवील अरसे से इस इकदाम की हिमायत कर रहा था, बयान में कहा गया है कि इस फैसले से शाम की इक्तसादी बहाली और तामीर नौ की राह में हायल एक बहुत बड़ी रकावट दूर हो गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि यह पेशरफ बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ शाम के ताल्लुकात को मजबूत करेगी और मुल्क में मुस्तकिल इस्तेहकाम के अमल को तेज़ करेगी। इसके साथ ही आलमी बरादरी से एक खुशहाल शाम के हदफ की जानिब अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की अपील भी की गई है।
1: इसराइल गजा पर मुसलत करदा नसल कुशी जंग में 21,500 से जायद फलस्तीनी बच्चों को कत्ल और गजा में 1,244 मसाजद को शहीद कर चुका है। फलस्तीन हुकूमत के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइल अक्टूबर 2023 में शुरू करदा नसल कुशी जंग में 21,500 से जायद फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर चुका और गजा की 1,275 मसाजद में से 1,244 को शहीद कर चुका है। दफ्तर ने कहा है कि इसराइली अफवाज ने गजा में नसल कुशी के दौरान शहरियों घरों और इबादतगाहों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया और 1,077 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया है। दफ्तर ने शहरियों बच्चों और मजहबी मकामात को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की और बैन अल-अक़वामी सालिसों से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने और मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। यह बयान इसराइल की जानब से इलाके पर हमलों में इजाफे की नई धमकियों के बाद जारी किया गया है।
0: फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के हमलों में जनवरी से जुलाई के अरसे के दौरान गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 63% इजाफा हुआ है। فلسطین کے محاصرہ دیوار و آبادکاری کے خلاف مزاحمت کے کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری تا جولائی کے 7 مہینوں کے دوران غیر قانونی آبادکاروں کے 4113 حملے ریکارڈ

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तनाज़ात के दौरान कहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद तफसीलात दिए बगैर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है, सदर डी जे ट्रंप। इतवार के रोज़ वज़ीर ख़जाना स्कॉट डिसेंट ने कहा था कि अमरीका ईरान के खिलाफ इक्तिसादी डी डे में दाखिल हो चुका है, जो उनके बकौल ट्रंप इंतजामिया की जानब से तेहरान की फौजी और जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करने के बाद हुआ है। डिसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया, उसके तकरीबन 100% के करीब फौजी कारखानों को तबाह कर दिया और उसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। ट्रंप ने जुम्मे के रोज़ कहा था कि जब तेहरान पर सख्त इक्तसादी इकदाम लागू किए जा रहे हैं तो वो अब भी ये समझते हैं कि ईरान वाशिंगटन के साथ दुरुस्त माहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो माहदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो दुरुस्त माहदा करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी बहरिया नहीं है, उनकी फ़िज़ाइया नहीं है और वो अपने फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, पुलिस को भी तनख्वाह नहीं दे रहे। उनकी महंगाई की शरह 350% है। ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि अमरीका ने अपने हुरमुस के आसपास के इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें अहम बहरी रास्ता और जनूबी ईरान का आसपास का ज़मीनी इलाका भी शामिल है।
2: अमरीका के वज़ीर दिफा पैट हिक्स ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ दोबारा हमले शुरू कर सकती है। दी हिल के मुताबिक हिक्स ने विस्कॉन्स सूबे में एक फौजी अड्डे के दौरे के बाद सहाफ़ियों से ईरान के मामले पर गुफ्तगू की। हिक्स ने कहा है कि अगर हमें किनेटिक हमले करने पड़े तो हम करेंगे, अगर ईरान अपने पास मौजूद फ़ायदे ज़्यादा इस्तेमाल करे या अमरीकी फ़ौज से टक्कर लेता है तो हम वो करेंगे जो करना ज़रूरी है। हिक्स ने कहा है कि फ़िलहाल ईरान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ इक्तसादी दबाव है और इसने दावा किया है कि अमरीका आबनाए हुरमुस को कंट्रोल करता है। पैट हिक्स ने कहा है कि ईरान हुरमुस से कुछ भी नहीं गुजार रहा, ताहम हम गुजार सकते हैं। आलमी मईशत इस बात से वाकिफ है और इसीलिए उन्होंने आबनाए को कंट्रोल करने पर बड़ा दाव लगाया, मगर वो कामयाब नहीं हुए।